तुम सुखदाई पुरख विदाते, तुम रखो अपने भाला। तुम निधान अटल सुलता, जी जंत सब जाचे, कहु नानक हम एह हवाला। राख संतन कै पछे, आनंद गुण निधान। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब।

मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपद रेल रवाल सब दर्द भय दुख दाल हर हो नदर निहाल हर कर गए हर आप सवारे ओ हर

मंथन आनंद आनंद भाए हराम देखी खबर भाई हराम देखी खबर गुर भाई मंथन आनंद आनंद भाए मंथन आनंद आनंद भाए हर आवते सुने मेरे लाल हर हर आवते सुने मेरे लाल हर जन नानक हर हर मेरे जन नानक हर जन नानक

हुक्म अनुसार ये नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरपग रेन रवाल सब दालद पंज दुख दाल हर हो हो हो नदर निहाल अस्थाई दी दुख है। मेरी बेनती है मेरा बेटा है जसप्रीत पाल सिंह पुरातन कीर्तन अनुसार गुणीन सज्जना तो मैं हिमा चाहता हां पखावज दे बोल इस तरह बजाए जाते सन। मैं एक मिनट आप जी का इसलिए लिया है कि दादरा कहरवा ते आपां गुरु के कीर्तनिया नाल गाउंदे हां पर अज जरा अस्थाई विच एक पंक्ति पड़ताल दी भी कह के वेखिए आपां आख सकदे हां या नहीं। मेरे मन आखो जी मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुरु भगत रेन रवाल सब आखो जी नट नारायण महला।

बहुत दूर तक बैठी है असी ते तीन जने गा दो जने रहे हैं पर नाथ सिंह बैठे ने साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है साडे को पर आप जी की गिनती बहुत ज्यादा है आप दे दास रे ने आज की सेवा करके आप जी पासों खुशियां छुट्टियां लेके कल टोरंटो जाना है दसरिया नु भी याद रहे कि संता ने पड़ताल नाल नाल गई सी बुलंदवासी नाल अखंड जी को

करो। शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ सनेवर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक विद्वान ऐसा मनदे ने दुनिया भर दे ज्ञान नो सिर्फ दो हिस्सों च ही तकसीम किया जा सकता है, ज्यादा हिस्सों च नहीं। एक पदार्थ का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान, एक संसार का ज्ञान, एक निरंकार का ज्ञान, एक बाहर का ज्ञान, एक अंदर का ज्ञान। ज्ञान दियां सारियां धारावां इन्हां ही दो सागरां विच लीन हो जांदियां। ज्ञान कुछ भी होवे, या बाहर दा है या अंदर दा है, या पदार्थ दा है या परमात्मा दा है। ये जो दो प्रकार दा ज्ञान है

0: रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल फॉर्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह ले आज ही गुरदयाल सिंह बादलू
1: 604-351-5111 ते कॉल करो 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बादलू।

श्रीमान संत बाबा कुलदीप सिंह जी झाड़ साहब वाले महापुरख पहुंचे ने। आओ एक जकारा महापुरखां दे नां दा बुलायो जी। बोले सो निहाल सतगुरु महाराज कृपा करदे। आओ महापुरखां दे नां दा इक शब्द पढ़ियो सारी संगत जी। जिन

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: देखो कोई अरबांपति है, कोई दिहाड़ीदार है, कोई मांग के खांदा है, करम ही आखो साता है, करम ही है। कोई लख यतन कर ले फिर मसा रोटी तक रहा, कोई करोड़ा अरबां बधी करमा करके कहे को 50 लाख दी गड्डी, करमा करके मैनू दिल्ली वालिया ने दसिया जसवीर सिंह जी ने, कहते 2-2, 2.5-2.5 करोड़ 5-5 करोड़ दी भी गड्डी, करमा करके किसे को 5 करोड़ दी, किसे को 50 लाख दी, किसे को 10 लाख दी, किसे को 2.5 लाख दी, किसे को स्कूटरी है, किसे को साइकिल है, किसे को लत्ता ही नहीं है।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश कर देन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल। अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम।
1: धन धन तेज धन दे घट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ।
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत।
1: जन नहार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पेक न काहू भीन।
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे।
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: इसकी सीख तरह संसार।
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक उन जन चरण पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन।
1: आप करतन बेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।
1: पाप स्यान सकल ते रहत,
0: सब कुछ जाने या तमकी राहत।
1: जिस भाव है तिस लय लड़ लाए,
0: शांत अनंतर रहा समाए।
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सब वस कर दीने, बादशाह सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपो होए पजो भगवान, साध संगत मिल पीनो दान। शरण परे प्रभ अंतर जामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी।

0: करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे दुध आखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच नियाओ वड्डी वड्याई जा निचल थाओ वड्डी वड्याई जा नया लाओ वड्डी वड्याई बुझ सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
0: जाके सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए लेकिन हुक्म करे विनाश एक ना पाणे कट लेकिन

0: सतगुर विच अपरखियन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सोंज तलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।
1: गुरमुख प्यारे आए मिल में श्री विशुन्नी राम राजे। मेरा मंथन बहुत बैरागिया हर निरस भिन्ने। मैं हर प्र प्यारा

दीपालोआ मंडला खंडा वर पंडा अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जिन तो पाए कै संभाले सबना जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जवारी स्वास्थ्य।

औरी दान भिंडा तली खाक जे मेला तमस्त कलाई है गुड़ा लाल छड़िया हो एक मना लगती है ये फल देवे हो पाई है देवे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया ता तुर्तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।

0: पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवावह मंगह मुख द्वार, जति सदावह जुगत न जान है छड बह कर बार। सबको पूरा पे होवे घट न कोई आखे, पथ प्रमाणा पिछे पाई है ता नानक तुलिया जापे महला पहला।
1: वदी सवज नानका सचा वेखे सो।

महला पहला दुख दार सुख रोग भया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहु करी न होई। बलिहारी कुदरत वसे अतरंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिद्ध सवाले।

कहे सितम्बर स्वामी सच में आशय सच रहे सबको सच समावे ऋग कहे रहे आप भरपूर राम नाम देवा में सूर नय लय प्राशित जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में

मने भादु बजाय सलाही सच सूत दरगेंद्र पाइये तगन तुर सपूत महला पहला तगन अंदरी तगन नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगन हाथी तगन जेवा तगन अखी वे तगा पेवत वड़ता गेवरा कत लै पहाड़ करे भी आ।

मन का सूदक लोभ है जेवा सूदक कूड़ अखी सूदक वेखना पर तिरया पर धन रूप कन्नी सूदक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम पुर जाहे महला पहला सबो सूदक पर मैं दूजे लगे जाए जमण मरण।

68 तीर्थ जे नहावे उतरे नाही मैल। जिन पटंदर बाहर गुदड़ते भले संसार, तिन नेहो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रोवे चुप्पी कर जाहे, प्रवाह नाही किसै केरी बाज।

राज राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर अमृत वेले जी की अरदास बेनती जोदड़ी है। सतगुरु जीओ आप जी ने अपार बख्शिश कीती है अमृत वेले तो खुले दर्शन ददारे दे कर हुक्मनामे बख्श के उपरंत पंजा बाणियां दे नित नेम अते आसा दी वार दे कीर्तन दी बख्शिश कीती है।

अहनस सहज सुभाई, दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुखदाई, होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसह कुरसह झटिया, खुद दिखे सच्चे पातशाह।

तत स्यों तत मलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन पारस कह मथुरा अमृत बैना मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन भिखो नैन नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लब लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तन शब्द सुरत कीनी वर खाई

गए जन्म मरण दुख जाय हो वै सिफत खसम दी नूर अरसोह कुरसोह चटिय तद डे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिय सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बहठिया सोहिया

चो लंघ रहे ओदे सारे कर्म खिडौणिया तो ज्यादा कुछ भी नहीं होणगे और खिडौने भी गुड्डे ते गुड्डे दे। भगत कबीर कहिंदे ने माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो खिलौनिया नाल बच्चे खेडदे ने। जो धार्मिक तल ते बच्चा है राम खिलौना है। राम कोई वास्तविकता नहीं है, राम कोई सच्चाई नहीं है, राम कोई हकीकत नहीं है, खिलौना खेडना है। मन दा परचावा, सिर्फ मन दा परचावा। जैसे बच्चा खिडौणिया नाल खेड रहा है मन दा परचावा, इस जरा शरीरक तल ते वड्डा हो गया, इस दे परचावे जरा वड्डे ने, इदियां ख्वाहिशां जरा वड्डियां ने। तो खिडौना भी बहुत वड्डा चाहिदा है और मामूली खिडौना नहीं, राम दा खिडौना चाहिदा है, ईश्वर खिडौना चाहिदा है। ताए खेडे क्योंकि ख्वाहिशां बहुत वड्डियां, कामनावां बहुत वड्डियां, वासना बड़ी अपार। तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है, तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना जवानी वृद्धावस्था। समाजिक जीवन देच, राजनीतिक जीवन देच, धार्मिक जीवन देच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिनू समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिनू नहीं समझिया ते कुछ भी नहीं समझिया। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया नहीं, परमात्मा नू जानिया नहीं, जानकारी बहुत कठी कीती है और कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पर सेकंड तू कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनु शरीर दी कुछ समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनु कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनु कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपणे दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नु इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनूं सब कुछ बोध है, मैनूं सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आउंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आउंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनूं जवानां दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदे अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जाती है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया, ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दिया इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर
गर्भ परत गहे ले हो।

0: चॉइस दीजिए, सब्जी भले खाना है, रोटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ने, ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी। 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स, दावा ते वादा पक्का।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना है, फ्रूटी क्या नहीं जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद सर्वशील ममंगशीलं सर्व पावने मम पावनं सर्व कर्तव्ये ममं कर्ता

सो कोके ना सो ये आसार रात दिनस के फूकने कवे के सोने पुकार। कबीर केंद्र में तो दिन रात बोली जाना कैसो कैसो कैसो मैं तो बोली बोली जाना किसी दिन के खेड बने किसी दिन के खेड बने। जगत दे चसी पहले वेखने फिर बोलते हैं प्रभु नाल के पहले बोलना पेगा बोलने ही बोलने एक दिन दिखाई दे सामने खड़ा बिल्कुल निकट के। तो मैं अर्ज करा जैसे बोलन का फुरना पैदा होता है पवन नाभि नाल टकर उतो धुन उठती है उन्हों कहने परा धुन उठ के जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों कहने ने पसंदी इतने उसन शब्द मिलते हैं अल्फाज मिलते हिरदे तो उठ के बोल वाक जद कंठ तक पहुंचता है इनू मधमा कहने ने वाक पूरा बन जाए जबान इसन बयान कर देती है इनू बैखरी कहने परा बसंती मधमा बैखरी इनू चार बाणियां कहने परा ही बसंती बनती है बसंती ही मधमा बनती है और मधमा ही बैखरी बन पवन टकराई नाभि धुन पैदा हुई पर पहुंची हृदय तक अल्फाज मिल गए ही बन गई बसंती पूरे का पूरा वाक बन गया जो कहना है कम अंदर बड़ा तेजी ना लाऊंगा कंठ तक पहुंचे इनू कहने मधवा जवान ने बयान कर दिता इनू कहने बैखरी धुन बार आ गई जवान तेरा जो नाभि तो उठी सी हृदय के कंठ दे पहुंच गए रसना

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण @604581-1900।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चे, और तृप्ति तो बिना इसनों होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहंदे ने। ए राजा होना चाहंदा है, ए राजा बनना चाहंदा है, ए महाराजा बनना चाहंदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ रहे है, धन कढ रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनू राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नू कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नू पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। एक गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा कर दे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनू सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, तीस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया, बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया।
और मिल रहे, लेकिन झोली फिर भी खाली। फिर भी ये तृप्त नहीं हो सकया, फिर भी ये अपने आप नु कहिंदा ते रहा, मैं राजा, मैं महाराजा, पर नहीं, तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है। इतना वड्डा सागर भी मनुख नु राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलिया गईया, चंद्रमा ते, होर ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे। लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है, निगाहां होर अगां तो अगां जा रही ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे, जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके, और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा। बार जितनी भी खोज करेगा, तेरी लोड़ा दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा, फिर किथे खोज करिए। तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी मां, ए जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी ना है। ए बंदे, जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे है, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार। पहाड़ां दी खोज लई बारमुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बारमुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बारमुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इहदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है। ध्यान नूं अंतरमुखी करना है, जो बाहर जा रहा सी उनू अंदर लेना है। बंदे खोज देर हर रोज, ना फिर परेशानी मां है। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है, और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुर होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह दी खोज अपने अंदर भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा। पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदिया करदिया तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिलिया, धन मिलिया, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुती खजाने लबणगे, कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल,
ਸਦੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖੋਜ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਥਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕੰਗਾਲਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੋ ਫਿਰ ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰੀਏ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵ ਏ ਕੇਸੋ ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ
तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नू तूफान कहंदे ने। मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है, ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा इस उछली अवस्था नू देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ, ते सिवाय अहंकार तो और

संतुलन खो देंद है, असीम क्रोध तवाजन डावाडोल कर देंद है, मनुख नो पागल बना देंद है। हां जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन बंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ा आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार जिथे अतृप्ति उथे क्रोध, यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नूं आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखते हैं असि सिपियां संख लहरा सागर दे कंडे देने, उपरी सतह देने गहराई दे मोती पै ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे चे। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब कहिंदे ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोजदिया उसनू नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी, नौदा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्ट, हवाए सल्तनतो वाजाओ के कज कुलाही नेस्ट। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है, वो दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नूं ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहिंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है। इतना वड्डा पसरे होया फैले होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरे होया पानी, समुंद सहा सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इस दे घर दे च हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन,

द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो।

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे ले लियो। 604-349-1313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 604-349-1313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।
5: The Surrey Crime Prevention Society is looking for new volunteers. Report suspicious activities in your neighborhood with the Citizens Community Safety Watch program, or take part in community safety tours by observing local malls, parks, transit hubs, rec centers, and libraries. Help keep our roads safe with the Speed Watch program, or adopt a street and help our neighborhoods become anti-graffiti communities. The Surrey Crime Prevention Society also needs volunteers for the office, special events, youth mentors, and students. PreventCrime.ca, an initiative of Pulse FM Cares.